मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तू की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

0: मत को परम बुले संसार निगुरे का है नाओ बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इन्हां दा नां उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार की यात्रा ते जांदे हन हर एक साल। सात संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हैं, बेकार हैं, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहे। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुर मुकत ना पाई ए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां ये सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं है। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तां गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिल ए अजीब आ, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थों ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, सी इह गल नहीं है। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहाल, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया प्रगासा, आओ निगरी पुरुष दा ए हाल है ते आओ वडभागियो असी सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देओ, नाम दी बख्शिश करदा रवे सदा, सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।

भाई लोग आश्रम में पहुंचे, हजूर ने दूर ही तक देखे प्यारी सास संग पी, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गया। आज आ जोगिया साढ़े कोल आज। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे, जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, हर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। भाई जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी, कि अंतर जामी होंदा तो हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा तो मैनू सजा दे।

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखां थाणी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो यह भी कहन लग गया कि गुरु नू पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

कितना अनमोल खजाना। गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी, जपजी साहब दी इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है, ठंडी ठंडी हवा।

दो प्रेमी आए इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई, थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने, उन्हां भी संदोखड़ी विच पैसे पाए, मत्था टेकिया, वो भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया, तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन, कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नू इना बैठिया लोकां नू इंज लगया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जई फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। ओ तुरदे तुरदे इन्हां सारियां लोकां दे सामने आके बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिया। एक मुसाफिर मालक जापदा, एक नौकर। नौकर कहन लगा, ए जोगी राज किवें मन टिका के बैठा है, किवें इहदा मन परमेश्वर दे नाल जुड़े है। उस मालक दा नौकर मुस्कुरा पिया, मुस्कुरा के अपने नौकर नूं, हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा, लोहे दी संदूखड़ी नाल ओ किस तरह, कौन है मालिक ते नौकर? मालिक धन गुरु नानक साहब ते नौकर मरदाना। हैरान होके पुछिया, संदूखड़ी दे नाल इहदा मन किस तरह जुड़िया?

गुरु साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है ए सारा संसार डुबदा जा रहा है कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड्ड दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंचू है संत ने। ते कबीर साहब कह लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नू क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया उदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इं बयान करदे।

जिन्हों ने गज साढ़े तह तह धोतिया साढ़े तीन दिन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनिया ने तेरे पाए न तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिटे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

वसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

ए अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया ओ सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे। उन्हां लोकां नूं कहण लगा, नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपे है ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इन पखंडा तो

माया वास्ते इंसान किन्ने झूठ बोलता है, पर परमेश्वर दे नाम दे लागे नहीं जांदा। एक महापुरुष अपने श्रद्धालु दे घर कुछ समा रहे, तुरन लगे ते घर वालिया ने रस्ते वास्ते महापुरुषां लई चार आलू दे परौंठे बना दिते। महापुरुष तुरे, एक लालची हग जिहड़ा सी उहने देखिया कि महापुरुष अपने श्रद्धालु दे घरों बाहर निकले ने, इन्हां कोल जरूर माया होवेगी ते इन्हां दे नाल ही चलना वा इन्हां दा सेवक बन के। जदों दा लगा माया कढ लवांगा। महापुरशां नूं कहण लगा, ऐ महापुरशो मैनूं अपना सेवक बना लो, मैनूं भी अपने नाल लै चलो, मैं तुहाडी सेवा करांगा। महापुरश कहण लगे, चंगा भाई, नाल तुर पिया। तुरद्यां तुरद्यां दुपहर हो गई, एक नदी आई। उस नदी दे किनारे महापुरश खलो गए। कहन लगे, भाई मेरा चित करदा है मैं इशनान कर लवा। महापुरशां ने कपड़े लाए, इस लालची ठग नूं अपने कपड़े दे के कहन लगे, तू कपड़े संभाल ते मैं जरा इशनान कर लवा। कहन लगा, महापुरशो तुसी फिक्र ना करो, मैं चंगी तरह संभाल करा। महापुरश ते नहाण चले गए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰੌਂਠੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, कपड़े पाए। कहन लगे, आ भाई तेनू भी भुख लगी होनी है, चार परौंठे ने, दो तू खा ला दो मैं खा ले। जदों पौना खोले ते परौंठे तीन निकले। महापुरश कहन लगे, भाई परौंठे ते चार सीगे, एक परौंठा तू ते नहीं खाद। ए लालची कहन लगा, महापुरशो मैनू ते पता ही नहीं कि तुहाडे कोल परौंठे भी हैगे। महापुरश कहन लगे, होर कोई आया नहीं, तेरे बगैर कौन खा सकदा, सच दस परौंठा तू ही खादा है। कहन लगा, महापुरशो कमाल हो गई, मैं तां परौंठा देखिया ही नहीं ते खाना कित्थों। महापुरश समझ गए कि परौंठा जरूर इन्हें खादा, ते ओ लालची भी समझ गया कि महापुरशां नूं पता लग गया कि मैं परौंठा खादा। पर कहन लगा, ये जो भी कर लैण, मैं केड़ा मनना है कि परौंठा मैं खादा। ओ परौंठे खा के अगां तुर पए। नदी पार करनी सी ते महापुरश कहन लगे, भाई सच दस, जे तू सच ना बोलिया ते आपां दोवे डुब जावांगे। नदी पार करनी है, सच दस परौंठा तू खादा है। कहन लगा, महापुरश कमाल हो गई, जद मैं परौंठा देखा ही नहीं ते खाना कित्थों सी। नदी पार कर ली। महापुरश कहन लगे, बड़ा ही ठीठ है, ये तो मनदा ही नहीं। ते ओ लालची अंदरों अंदरी हसदा जांदा है ते कहंदा, महापुरशो ला लो जिन्ना जोर लाना है, मैं केड़ा मनना है कि परौंठा मैं खादा है। और अगे गए, जंगल आया, जंगल नूं अग लगी सी। महापुरश कहन लगे, भाई अग लगी, जे झूठ बोलिया आपां दोनों सड़ जावांगे, हुण तां दस दे परौंठा तू ही खादा है।
कहन लगा महापुरुषो रब दी सौ मैं परौंठा देखे नहीं ते खाना कितू सी आख भी पार कर ली। महापुरुष कहन लगे ए ता बड़ा ही ढीठ निकले मनदा ही नहीं ते ओ भी कही जांदा महापुरुषो लालो हां योर जिन्ना लाना है मैं केड़ा मनना है। अगे एक माया दा ढेर आया महापुरुषा ने उस माया दे तीन हिस्से किते ते ओ ठग कहन लगा महाराज आदमी आपा दो आ ते माया दे तीन हिस्से क्यों किते ने ते महापुरुष कहन लगे भाई एक हिस्सा ते तेरा ते एक मेरा ते एक हिस्सा ओदा जिन्ने ओ परौंठा खादा सी जे ओ एथे होंदा ते अपना हिस्सा ओ भी लै लैंदा ते जदू ए सुनिया ते छाल मार के उस ढेर ते जा पे नाले माया फड़ ली ते नाले कहंदा महापुरुष मारो भावे रखो ए ढेर मेनू दे दियो क्योंकि ओ परौंठा मैं खादा सी। ते महापुरुष कहन लगे भाई इस माया ने ते तेरे नाल नहीं जाना जदू तेन सच बोलन वास्ते कहा ते रब दी सौ खा गए माया दा सवाल आया ते सच बोल पिया पर ए माया तेरे नाल नहीं जाने ए कल खत्म हो सकती है पर परमेश्वर दा नाम ओ ता कदी भी खत्म नहीं हो।

शाम पे पाए लालो कुछ साथियां दे नाल गुरु साहिबां नूं मत्था टेक के हाथ जोड़ के बैठ गया। कहन लगा पातशाह दुनिया ते इन्ने पाप वध गए ने कि जिन्हां बारे बयान करना बड़ा औखा है, खास करके इस एमनाबाद विच तां

जदू बाबर ने हमला करना है ता हर पासे दुखां दे वैण होणगे, लोकी रोणगे कुरलाणगे, ते संदूर दी जगह इन्हां दे सिरां विच लहू

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखता है। पर एक गल है, ओदा न्याओ सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

उस परमेश्वर दे ए जीव किन्ने दुखी ने, आपां भी चली नाल तुर पए। मीर खान ने अपना कोड़ा मरदाने नूं फड़ाया, गुरु साहिबां नूं भार चुकण वास्ते दिता गया, जिहड़ा 2 फुट अपने आप सिर तों उच्चा आ रहा है।

0: फिर शुक्र कीता। आदेश कहंदे ने मथा टेकना, ऐ बाबा ऐ अकाल पुरख मैं तेनु नमस्कार करदा, क्यों कि तेरा किसे ने अंत नहीं पाया, तू कदी सुख देना है कदी दुख देना है।
1: आदेश बाबा आदेश।

0: सागर मंडप महला कहां सुबंक सराई।
1: ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया।

हिंदवाणी, तुरकाणी, पटियारण ते ठकुराणी। किसी का सिर पट गया, किसी दिया बाहां वड्डियां गईयां, कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया, भाव कि सिपाहियां ने किसी का भी लिहाज

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाने विच, किथे जाके रोईए क्यों के सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख दसी।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते ले जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लैके वापस आ जांदा है। इस तरह ए इंसान, तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन दा दिन जदों मुक जाएगा।

एक गल और कही ऐ इंसान ए ना कहो कि गुरु नानक कहंदा है सब कुछ छड़ दियो। हां मैं कहना पर विचार तुसी करो जेड़ा मर गया अपने नाल की लै गया जे कुछ लै गया है ता तुसी भी जो मर्जी इकट्ठा करी जाओ मैं तुहानू नहीं रोकदा। इंसान मरिया वेड़े विच पिया सारी उम्र पालना कीती घर बनाया ते तिया पुत्र कहंदे ने जेबां फोड़ लो बटुआ ता नहीं घर दियां चाबियां ता नहीं हाथ देख लो कड़ी ता नहीं बननी सोने दा कड़ा ता नहीं पाया कोई अंगूठी ता नहीं पाई जे है ता सब कुछ ले ले जे चंगा सूट पाया है ता सूट भी ला लेंदे घर दा मालिक। सारी उम्र तिया पुत्रां वास्ते कमाया अज उन्हां तिया पुत्रां ने सब कुछ ला लिया एक कफन पा के लैके तुर पए शमशान घाट लै गए। जे कफन चंगा होवे ते कई वारी साड़न वाला उत्तों ला लैंदा माड़ा कफन रह गया अग लाई ते अगन देवता कहंदा भाई आया ते नंगा सी कफन किथे लै चले कफन भी वो साम लैंदा है शरीर भी नाल नहीं जांदा। ते साहब जी कहंदे ने भाई जे मरन वाला अपने नाल कुछ लै गया ता तुसी भी पाप करी जाओ

चंगे गुणा का व्यापार करो, औगुण छड़ दियो, गुणा नू संभालो, एहो जे काम करो कि उस दरगाह विच तुहानू

अपने ते दोष नहीं लिया। इमना बाद लोग बड़े पापी सन, उन्हां लोकां नूं सजा देनी सी, पर तू जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलां नूं जमा दा रूप दे के इमनाबाद ते भेज दिता, ते उन्हां ने इत्थे दे लोकां नूं कतल कर करके गलियां दे विच रुला दिया।

पर फिर ताना मारे फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता या काल पुरख तू सारिया दा है, पर एक गल है जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू, जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा। पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी, बाबर दे कोल बंदूकां सन ते इमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। ए कोई

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाए वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर नाचे त्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों